0: हेलो
1: हेलो
0: माहौर
1: माहौर
0: काज में की गानी हीरो
1: इतना ने माने राखी सारे तंगा अन्य मरुशारा ये वन वन बरे में भी ना मुमाई मरो उनको नहीं तो जिगिटो नक्शे का शिशा वास हमारे काम बनो मजांगो अंडर से ट्रिक में ट्राई जिगिटो नक्शे का शिशा वास काम बने यंत्र का मेरे नंदाई जेरी जिगिटो नक्शे का शिशा वास Mana kita mendenga, nenanda itu mana mengweri nama andra mendenga, nanti kita nak kita sih sahabat. Ekam bener masa orang aku makan dana seribu sekuibum bana riel sekuibum bawa kiri kita nak kita sih sahabat. Ekam bener ni untuk orang aku murushara nama janggo itu kita nak kita sih.
0: Wanyuma.
1: Ekam bener orang aku kubiri ku makan dana kita nak kita sih sahabat.
0: Berakozi.
2: The joy of salvation. Umunezero wagakiza becomes significant. Ugira ifatiro. When we come to understand
0: hello?
1: God's love. Yeah, hello.
0: Amahoro.
1: Itashimana.
0: Kazi muri bandi muherereye.
1: Ifarweri mukanaza bakuye.
0: Eh, kazi kazi.
2: Do you value Christ ministry in your life?
0: Hello?
2: Bega urahagaciro igikorwa cha Kristo